तलवारां नूं पहन करके शस्त्रां दे धारणी हो करके जिस वेले कलयुग दे समें संसार विच विचरणगे उहनां दी जय जयकार होवेगी। इह वर गुरु अमरदास महाराज जीआं ने बख्शिश कीते सन संगत जी, जिहड़ी फिर गुरु नानक दे घर दी जय जयकार है, दूज दे चंद्रमे वांग आए दिन वधदी जांदी है। जिवें संगत जी 84 लख जूना रात नूं सौंदियां ने, उन्हां दे विच्चों ही एक जून है। 84

कोई दसा नहां दी किरत कमाई करांगे, पर उन्हां दे विच्चों ही एक जून है उल्लू दी। सूरज चढ़िया वेख के उल्लू घबरावे, उल्लू नूं घबरा पैना शुरू हो जांदा है। जदों हनेरा नाश हो जांदा है ते संगत जी सूरज दा प्रकाश हो जांदा है। एदां गुरु अमरदास जीआं दे वर पा करके मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहिब दी सिरजना कीती है।

समय अनुसार पहुंचने की कृपालता करनी है तो साध संगत जीओ तीजा घलूकारा जून 1984 के शहीदों की शहीदी को समर्पित जो भारत सरकार ने बहुत ही कुटल नीति के तहत सिखां दी नसलकुशी करन वास्ते वो ताकत जड़ा एक देश दूसरे देश से हमला कर लगे वरतदा है BSF CRP पुलिस आर्मी टैंक तोप जहाज हैलीकॉप्टर बंब गोले सब कुछ वरत्या इन्होंने। और खालसा जी ओ 3 जून नू गुरु अर्जन साहब जी का शहीदी दिहाड़ा से 32 संगत छोटे छोटे बच्चे स्कूल दे बच्चे टीचर साहब 32 संगत आईया सन इन्होंने निर्दोष संगत दे उपर बालकों के उपर गोलियां मार मार के उन्होंने शहीद किया। ऐसा भारत सरकार ने जुल्म किया है। हुण अमृत गुरबाणी कीर्तन दे नाल आपां जुड़दे हां, सेवा निभा रहे हैं रागी भाई गुरमेल सिंह संगरूर वाले, रागी भाई सिमरनजीत सिंह तख्त सचखंड श्री हजूर साहब वाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: पाठ इथे पोला करना दातो नहीं कहना जिवें उचारण किया गया एवं ही करना।
1: हीरा लाल अमूल जन्म है कौडी बदला हारियो रे रहाओ त्रिसना त्रिखा।

0: तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया एक वाक बेंतियां दे प्रवाह जारी करदा होया एक बचन पर समय अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़ क्यों मैं चल नहीं सकदा क्यों नहीं चल सकदे हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा दो कदम चलेगा तीसरे से डिगेगा लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है बच्चे नु चलना आ गया है प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है चलो एक कदम ही सही चलिया ते है एक कदम चल चलना एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे ने चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही वाट लखां को दी है चिंता न कर कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई चलन दी जांच आ गई ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना मां नू चिंता हो जाती है पिता नू पीड़ा हो जाती है ले जांदे डॉक्टर कोलों हो गया तीन साल दा हो गया चार साल दा पैर नहीं पुटदा तीन चार वरियां दा हो गया अजेश दी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहिंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे दी जबान चो निकलता है मम्मा अखर पहले निकलता है मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा जे बच्चा रह गया है बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है वाहेगुरु कहना कहना नहीं आया। जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका ना ते निकल आया एदी जबान चो पावे मां ने नहीं आखिया मैं मां तेरी लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कढ़वांदी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे परशियन होवे अरबियन होवे चाहे कोई हिंदी बोलता है सिंधी बोलता है पंजाबी बोलता है दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है मां मां मां। और जो जिंदगी का अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जीवन यात्रा सफल हो गई जगत ते आया सफल हो गया मां ते निकलिया और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां ते बच्चा बच्चा रह गया अगे नहीं जा सके। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने हे प्रभु मैं बोलन दी जांच नहीं आई तेरे बोल मैं सुन सका میرے کول کن بھی کوئی نہیں، میں اپنی آواز تیرے کنا تک پہنچا سکاں، میری زبان نو اجے بولن دی جاچ نہیں آئی۔ تیرے رستے تے میں چل سکاں او پیر میں کتھوں لیا، ہیگے نے منک کول پیر، ایک کلب تھیٹراں دے مارگ تے چل دے نے، بازار دے مارگ تے چل دے نے، سنسار دے مارگ تے چل دے نے، کدی کدائیں کوئی قدم جو پرمارت دے مارگ تے چلن۔ ستگر کہندے میرے کول وہ ہاتھ بھی کوئی نہیں جو تیرا دامن پکڑ سکن، ہاتھ ہیں منک کول، کدی پتراں دا دامن پکڑیا، کدی پتنی دا، کدی پتی دا، کدی ماں دا، کدی پتا دا، کدی متراں دا دامن پکڑیا، کدی بھراواں دا دامن پکڑیا، کدی بھن دا دامن پکڑیا، کدی پڑوسیاں دا۔ ہے پربھو تیرا دامن پکڑ سکاں، اجے میرے ہتھاں دے چوں سکت نہیں آئی، اجے میرے ہتھاں دے چوں پکڑ نہیں آئی۔ ہوندا تے ہے ہتھاں دے چ کوئی نہ کوئی دامن، ہر ایک دے ہتھاں چ ہوندا ہے، کسے دے ہتھے چ دامن ہے، کس دے ہتھے چ پتا دا دامن ہے، اس دامن دے آسرے تے چل رہے، کسے دے ہتھے چ بھراواں دا دامن ہے، کسے دے ہتھے چ پتنی دا دامن ہے، پتی دا دامن ہے، اور کسے دے ہتھے چ پڑوسیاں دا۔ کدی کدائیں کوئی کبیر جیسا، روی داس جیسا، رامانند جیسا کہہ اٹھدا ہے، اے پربھو میرے ہتھاں تے کیول تیرا ہی پلہ ہے۔ اور دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دے اگمی بول، سبے ساک کڑاوے دتھے تو پلے تیڑے لاگی۔ اردو فارسی دامن کہہ دیندے نے، پنجابی وچ پلہ کہہ دیندے نے۔ گرو نانک کہندے نے، اے پربھو میرے ہتھاں تے کیول تیرا ہی پلہ ہے، سفل ہو گئے ہتھ، تیرا پلہ میرے ہتھ چ آ گیا، مہان ہو گئے نے ہتھ، تیرا دامن میرے ہتھاں چ آ گیا۔ تے جد تیرا دامن میرے ہتھاں چ آ گیا، ہن جتھے توں اتھے اے دامن میرے ہتھاں چ، اے پلہ میرے ہتھاں چ۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج دا اے مہان واک ادھیاتمک گہرائیاں نو اپنے وچ چھپائی بیٹھا ہے، جس نو اجاگر کرن دی میں ایک نمانی کوشش کر رہا ہوں۔ بھج بل بیر برہم سکھ ساگر، گرت پرت گہ لے ہو انگوریا، سرونا سرت نین سندر نہیں، آرت دوار رٹت پنگوریا۔ اے پربھو او خوبصورت نیتر میں کتھوں لیاواں جڑے تینوں ویکھ سکدے نے، اس تو زیادہ ہور کوئی اکھاں خوبصورت نہیں ہوندیاں جنہاں اکھاں دے وچ پرماتما ہوندا ہے۔ ویکھو گے اکھاں، کسے دی اکھاں دے وچ دھن ہے، ٹپک رہا ہے لوبھ، کسے دی اکھاں دے وچ روپ ہے، ٹپک رہی ہے واشنا، کسے دی اکھاں دے وچ اس دی اولاد ہے، ٹپک رہی ہے ممتا، ممتا ہی دسدی پئی ہے اکھاں دے وچ دیاں پتر نے، واشنا ہی دسدی پئی ہے اکھاں دے وچ روپ رنگ ہے، کرودھ ہی دس رہے ہے اے لال اکھاں ہی دس رہی ہیں اکھاں دے وچ کوئی دشمن بیٹھ گیا ہے، اور دشمن نے اکھاں لال کر دتیاں، اکھاں لال نہیں ہویاں دشمن نے لال کر دتیاں، دشمن نے اپنا رنگ آدھا پکت پہنے۔ کدی کدائیں او اکھاں جنہاں دے وچ پرماتما ہوندا ہے، اور جد پرماتما اکھاں وچ بیٹھتا ہے انہاں نیتراں تو کوئی نیتر خوبصورت نہیں ہوندے، وہ ایسی خوبصورت اکھ جہدے وچوں پرارتھنا جھلکدی ہے، جہدے وچ پریم جھلکدا ہے، جس دے وچوں سم درشٹی جھلکدی ہے، جس دے وچوں دیا ڈل ڈل کے پیندی ہے۔ اسے درشٹی نوں آکھیا گیا امرتمئی درشٹ، امرت درشٹ، نہیں تے درشٹی بھی زہریلی ہوندی ہے، جویں کئیاں دے بول زہریلے ہوندے نے، کئیاں دی تکنی بھی بڑی زہریلی ہوندی ہے، کئیاں دے بول زخمی کر جاندے نے، کئیاں دی تکنی بھی آگات پہنچاندی ہے، چوٹ پہنچاندی ہے، گرا کے رکھ دیندی ہے۔ تکنی دے وچ زہر بھی ہے، تکنی دے وچ امرت بھی ہے۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج فرمان کردے نے، भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गरत परत गह लेओ अंगुरिया सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटुत पिंगोरिया। मेरे कोल कन भी नहीं तेरे अगम्मी बोलां नूं सुन सका। सुन सकदे ने कन परिवार दी आवाज संसार दी आवाज किथे निरंकार दी आवाज सुनदे ने बहरे ने हर एक दे कन बहरे ने आवाजा सुन रहे ने। ऐसी गल नहीं है समुचे परिवार की आवाज सुन सकते ने संसार की आवाज सुन सकते ने निरंकार दी ते कदी कदाई कोई कद पुरुष। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं और। ए परिपूर्ण परमात्मा जितनी भी आवाजा मेरे कन्ना च पै रही पंछियां दियां पशुआं दियां मनुखां दियां बदलां दी गर्जन पवन दी शां शां मैनू ते इंज लगदा है ए तू ही बोल रहे है। सब तेरी आवाज सब तेरा नाद सब तेरा संगीत। तो साहिब कहंदे ने मेरे कोलो कन भी नहीं मेरे कोलो जबान भी नहीं मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचावा। किसे दे बोल घर तो बाहर नहीं जांदे उसदे घर दे ची सिक्का चलदा है ये सिक्का उसका बाहर नहीं चलदा। इहदी गल घर दे बंदे ते मन सकदे ने बाहर दे नहीं इहदे बोल बाहर नहीं चलदे। कदी कदाई कोई कद व्यक्ति उसके बोल सारे महल सारे कलोनी चल जाते हैं मन लेंदी है समुची वसनीक उसके बचना उसके बोलों मन लेंदी है सुनती है। किसे किसे दे बोल राज दरबार दे भी पहुंचते हैं उत्थे भी सुने जाते हैं। कदी कदाई कोई लखा करोड़ा च एक कद खुशकिस्मत इंसान जिस दे बोल निरंकार तक पहुंचते ने और सुनदा है निरंकार उस दे बोल परमात्मा नूं भी सुनने पैंदे ने उस दे बोल ईश्वर नूं भी सुनने पैंदे ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने वो जबान मैं कित्थों लियावां जिहड़े तेरे तक बोल पहुंचा सके वो कन मैं कित्थों लियावां जिहड़े तेरे बोल सुन सके वो नेत्र मैं कित्थों लियावां जो तेनू वेख सकन और हथां दी ओह मैं पकड़ कित्थों लियावां जो तेरा दामन पकड़ सकन। मेरे कोल ते पैर भी कोई नहीं तेरे मार्ग ते चल सकन। मनुख दी सारी अहमियत खासियत ज्ञान इंद्रियां करके है कर्म इंद्रियां करके है। अगर एक कर्म इंद्रिय इस दे कोलों खो लईए ते ज्ञान इंद्रिय इस दे कोलों खो लईए फिर पत्थर ते मनुख दे च कोई फर्क नहीं है। पत्थर चल नहीं सकदा पत्थर किसे पत्थर दा दामन पकड़ नहीं सकदा क्योंकि उहदे कोल हाथ पैर नहीं ने। पत्थर नहीं बोल सकता पत्थर सुन नहीं सकदा पत्थर वेख नहीं सकदा पत्थर सुंघ नहीं सकदा पत्थर स्पर्श नहीं कर सकदा पत्थर सोच नहीं सकदा। अगर यही सब कुछ धार्मिक तल ते मनुख ना कर सके तो कम से कम धार्मिक दुनिया दा ते पत्थर ही है और कुछ भी नहीं है। होवेगा बाजार दे च इंसान होवेगा गुरुद्वारे मंदिर दे ते बैठा है जिवें पत्थर जिवें एक पत्थर नू कोई बोध नहीं पत्थर दे च कोई गति नहीं पत्थर दे च कोई पकड़ नहीं पत्थर कोई सुनदा नहीं। मैनू ते एक गाथा याद आई एक सूफी संत हसन दी ओ जद भी कुरान दी तलावत करे ते फिर वाज देवे व्याख्या करे तो मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदा सी और पिठ कर लेंदा सी स्रोतियां दी तरफ। कुछ दिन ते स्रोतियां ने बर्दाश्त कीता चलो खैर सुन दे पया चलो मुंह साडी तरफ नहीं करदा ते ना सही बोल साडे तक पहुंचते ने। लेकिन एक दिन स्रोतियां ने बेनती कीती फकीर साई ऐसा क्यों कर दे हो जब सानू सुनाण वास्ते ही तलावत करते हो जब सानू सुनाण वास्ते ही उपदेश आवाज देंदे हो फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लेंदे हो पिट साड़ी तरफ कर लेंदे हो। तो हसन मुस्कुराया ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੋਦ ਵਿਚ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਥਰ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਦਾਮਨ ਪਕੜੇਗਾ, ਕਦੀ ਲਦਬਲੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਗੋਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਸਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲੋਸਫਰ ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਬੇ ਕੋ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੇਖੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਦਿਖਾਈਏ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਨਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਰਵਨ ਸੁਣਬੇ ਕੋ, ਕੈਸੇ ਪ੍ਰੀਏ ਨਿਧ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ, ਨੇਚਲ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਲਾਈਏ। ਏ ਗੁਰੂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਮਹਾਨ ਤਤਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੋਲਿਆ, ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੂ ਸੋਨਿਓ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਾਓ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾ ਥੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਧਰ ਲਕੀਰ ਕੱਢੀ ਇਧਰ ਮਿਟ ਗਈ। ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਰਧ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਮਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਤੋ ਕਿਆ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ, ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਸਮਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अगर एक मूर्ख नाल एक ज्ञानी सहमत हो गया, सियाणा सहमत हो गया, तो इस नूं सियाणा आखण दी लोड़ की मूड़ है। और एक महान सियाणे नाल, दार्शनिक नाल, ज्ञानी नाल एक मूर्ख सहमत हो गया तो हुण इस नूं मूर्ख कहण दी भी लोड़ नहीं, सियाणा हो गया, सूझवान हो गया, तल सम हो गया, बराबर हो गया। भाई साहब कहिंदे ने, मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे, उन मन ले उलाइए, जो मेरी मत है गुरु तैनू कबूल नहीं, जो तेरी सोचनी है मैनू कबूल नहीं। तेरी सोचनी देच परमात्मा है, मेरी सोचनी देच पदार्थ ने, तेरी सोचनी देच राम है, मेरी सोचनी देच काम है, तेरी सोचनी देच निरंकार है, मेरी सोचनी देच अहंकार है, मेरी सोचनी नाल तू सहमत नहीं, तेरी सोचनी नाल मैं सहमत नहीं, तो रिश्ता किस तरह जुड़े, मैं नेड़े किस तरह आवां। मन में गुरमत, गुरमत में ना मन, ने चल होए कैसे उन मन ले बलाइए, अंग अंग भंग रंग रूप कुल हीन दीन, कैसे बो नायक की नायका कहाइए। भाई साहब कहने, अंग अंग टूटे ने, ना मेरे कुल हाथ ने, ना मेरे कुल पैर ने, ना मेरे कुल अखा ने, ना मेरे कुल कन है, ना मेरे कुल रसना है, ना मेरे कुल सोचनी है। हे गुरु, मैं तो पत्थर दा पत्थर, बिल्कुल पत्थर दा पत्थर। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, चलना आ गया हे प्रभु, मैनू खुशी हुई है, पर उच्च बड़ी तेज चलना आया है, जिसने आज ही चलना सीखे तो कितना के चलेगा, एक कदम गिरेगा, लाजमी गिरेगा। इस वास्ते फरियाद कर देने, सतगुरु तू मेरा हाथ पकड़, तू मेरी उंगल पकड़, भुज बल वीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया। एक कदम पुटन दी ते आप मेहनत करनी पैंदी है, एक कदम चलन दी ते आप समर्था जुटानी पैंदी है। कहिंदे ने, इतनी समर्था कोई जुटा लवे तो बांह पकड़ लेंदा है परमात्मा, बांह पकड़ लेंदा है गुरु, और फिर सारी लंबी वाट तय हो जाती है सहारे नाल, ईश्वरी जो है सहारे नाल। थोड़ी जिया झलक दिखाई देती है, थोड़ी जिया, तो यह महान झलक नू भी वेख सकेगा। थोड़ी जिया झलक की अपने औगुण दिखाई देने लग पैने, एक झलक है, पहला प्रकाश की है। अपनिया कमजोरियां दिखाई दे जाना, बड़े तो बड़े बलवान मनुख, सियाने मनुख कदी उन्होंने अपने अवगुण नहीं दिखाई देते, और कदी उन्होंने अपनिया कमजोरियां कबूल भी नहीं किया। दिखाई देन ते कबूल करन, कदी कोई गुनाहगार नहीं कहिंदा कि मैं गुनाहगार हां, ना गुनाह दिखाई देंदे ने, ना गुनाह नूं ओमंदा। अज तक अदालतां दे जितने कातल पेश होए, जितने चोर डकैत पेश होए, किसी ने भी नहीं आखिया सी कतल कीता, गुनाह कीता, गुनाह कीते कबूल ही नहीं, गुनाह गुनाह दिखाई नहीं देंदा। और गुनाह किधरे रोज दी किरत बन जाए तो गुनाह धंधा बन जांदा है, गुनाह गुनाह नहीं रह जांदा, पाप धंधा बन जांदा है, पाप पाप नहीं दिखाई देंदा। कमजोरी अगर किरत बन गई है तो फिर कमजोरी दिखाई नहीं देवेगी, क्योंकि ते किरत है, ये ते धंधा है, धंधा ते धंधा है। कई दफा ऐसा होंदा है पाप धंधा बन जाता है, गुनाह धंधा बन जाता है, दुनिया भर दा अनर्थ धंधा बन जाता है, तो फिर धंधा दिखाई देंदा है, गुनाह नहीं दिखाई देंदा, किरत दिखाई देंदी है, पाप नहीं दिखाई देता। जब किरत ही दिखाई दे रही है, सारे गुनाह धंधा दिखाई दे रहे हैं, तो ये मनुख हुण गुनाह नूं किस तरह देखेगा, किस ढंग नाल देखेगा। अगर अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, अपने औगुण दिखाई देन लग पे ने, ये पहली झलक मिली है, दूसरी झलक प्रभु दे गुण दिखाई देणगे। अपना गुनाह दिखाई देन लग पे है, परमात्मा दा पुन प्रताप दिखाई देवेगा। अपनी कमजोरी दिखाई देन लग पई है, परमात्मा दी परम शक्ति दिखाई देन लग पेगी, कतई नहीं उसनु शक्ति दिखाई देन लग देवेगी, चाहे कितनी शक्ति दी पूजा कर लवे और दुनिया कर दिए, शक्ति दी उपासक बन दिए, शक्ति दी पूजा कर दिए, उसे नु इस शक्ति दी झलक पेंदी है जिसनु पहले सब तो अपनी कमजोरी दी झलक पेंदी है, जिसनु अपनी कमजोरी नहीं दिखाई देती उनु प्रभु दी शक्ति कित्थे, जिसनु अपने गुनाह नहीं दिखाई देते उसनु परमात्मा दा पुन्न प्रभाव कित्थे, जिसनु अजे अंधेरा ही नहीं दिखाई देंदा वो चानने नु वेखण विच किस तरह समर्थ होवेगा, कथा ही नहीं। एक डॉक्टर प्रसन्न हो जांदा है जिसने अखां दा ऑपरेशन कीता है, पट्टी खोली है मरीज दी, ते उनु कहंदा आहिस्ता आहिस्ता अखां खोल, जैसे वो अखां खोलदा है तो डॉक्टर पुछदा है कुछ दिखाई देता, कहंदा हां अंधेरा अंधेरा, डार्क रूम दे चाकर अखां उस दियां खोलियां गईयां ने, पट्टी खोली गई है, चारों पासे काले पड़दे ने, कहंदा अंधेरा, डॉक्टर कहंदा कामयाब होया ऑपरेशन, अंधेरा दिखाई दे रहा है, हुण तैनू रोशनी भी दिखाई देवेगी, अंधे नू अंधेरा भी नहीं दिखाई देंदा, अंधे नू कुछ भी बोध नहीं, जन्म दे अंधे नू कुछ भी पता नहीं कि अंधेरा की होंदा है, उसकी वास्तविकता की होंदी है। आम दुनिया ते ऐसा कहंदा ही है कि अंधे दी दुनिया च अंधेरा है, कतई अंधेरा नहीं, उसनू अंधेरे दा भी बोध नहीं है, उसने कदी अंधेरा भी नहीं देखा, जिसने कदी अपनी कमजोरी नहीं देखी उन्हें परमात्मा की शक्ति कित्थे। कहंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन प्रसन्न होए भाई साहब भाई नंद लाल थे, कह लगे तुसी मैनू बहुत अच्छे और प्यारे लगते हो, थोड़ी सेवा ते प्रसन्न, तुसी कुछ मांग लो। जद कोई बहुत प्यारा लगे बहुत चंगा लगे बगलगीर करन नू जी करे फिर कोई और करन नू भी जी करता है, उस तो निछावर होन नू भी जी करता है, उस तो सदके होन नू भी जी करता है। सतगुरु कहंदे तैनू कुछ देना चाहते हैं, तेरी खुशी लेनी है, मंग। इस रब्बी शायर ने जो सतगुरु दी संगत करदिया करदिया अगम्मी झलकां वेखण दे समर्थ हो चुकिया सी, हथ जोड़ के बेनती करदा है, मंग मंगदा है, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे, ए मेरे गुरु अज इतनी प्रसन्नता दे घर दे च आए हो, मेनू मौका दिता है मंगो, तो ओ अखां दे जिड़ियां तैनू वेख सकन, तेरा जलवा वेख सकन, तेरा रूप वेख सकन, तेरा रंग वेख सकन, इन्हां अखां ने बहुत कुछ देखे है, अजे उस झलक नू नहीं वेख्या जिन्हों वेखण तो बाद कुछ होर वेखण दी तमन्ना रही नहीं जांदी। तो सहजे सहजे जिस दिन परमात्मा दिखाई दे जांदा है, परमात्मा सुनाई देंदा है, परमात्मा सोच मंडल दे चा जांदा है, ओ मनुख धार्मिक तल ते बालग हो जांदा है, बुजुर्ग हो जांदा है। सतगुर ए बुजुर्गी सारिया दी झोली च पावन, ताकि सारे पूरन पुरख कहला सकन, हर इंसान मुकम्मल होवे, हर पुरुष पूरन होवे।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुखे हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर कृपा जै नरको कीने तें ए जुगत पछाने नानक लेन भयो गोविंद सिंह ज्यों पाने संग पाने। गोविंद विच लीन हो जाना मनुख दे जीवन दा लक्ष्य है भविष्य है और कोई भविष्य नहीं। परिवार मिल गया है चंगा रोजगार मिल गया है धन संपदा मिल गई है तियां पुत्र मिल गए ने सब रस्ते दा पड़ाव है। यात्रा दे च की आउंदा एक पड़ाव आया गया एक पड़ाव आया गया एक पड़ाव आया गया। इस तरह संसार दे च आउंदा मिलना बिछड़ना मिलना बिछड़ना होर मिलया जो मिलया बिछड़ गया होर मिलया। कितनी दफा साढ़े इस तरह दे संबंध जुड़ चुके हैं। ऐसे घर हम बहुत बसाए कबीर कहने इस तरह दे घर में कई वसा चुके हैं। कईयां दा पिता बनया कईयां दा पुत्र बनया कईयां दा संबंधी बनया बार बार जन्म बार बार मरण। यात्री उतने चिर तक यात्रा दे च रहिंदा है जितने चिर तक घर नहीं पहुंचदा। जिसनू असी घर कहिंदे आ घर नहीं है। ये तन दा थोड़ा जिहा विश्राम पड़ाव है ये मन दा घर नहीं है। थोड़ा जिहा इसका मैं निखेड़ा करा। प्रथम लईए तन है कि गुरबाणी नू विचार नाल पढ़िए ते गुरबाणी ऐसा कहंदी है तन भोजन तो बिना होर कुछ भी नहीं है।

0: तन रोटी तो बिना और कुछ भी नहीं है। भाव तन की है रोटी। तुसी आखोगे मैं की आख रहे हैं। पहले देखना पड़ेगा रोटी दी अहमियत खासियत। तन रोटी तो बने हैं, तुसी आखोगे ऐसा पढ़िया नहीं, ऐसा किधरे सुनिया नहीं। गुरबाणी कहती है रखत बिंद कर निमया अगन उदर मजा। तन बने लहू तो बिंद तो। फिर गुरबाणी खुलासा कर दी है मां की रखत पिता बिंदारा। मां दा लहू है पिता दा बिंद है। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया। बहुत सारिया पंक्तियां। प्रश्न पैदा होंदा है खून किवें बनदा है रोटी तो, बिंद किवें बनदा है रोटी तो और किस तो बनदा है। खून की है रोटी, बिंद की है रोटी। रखत बिंद कर निमया, ये तन निमया है बने है लहू तो बिंद तो। रखत बिंद कर निमया अगन उदर मडा। बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहाया। दस मास माता उदर रखया बहुर लागी माया। ये खून तो बने है बिंद तो बने है। खून ते बिंद रोटी तो बनता है, भोजन तो बनता है। तन बने भोजन तो, तन बने रोटी तो। अगर ये बनया रोटी तो है तो जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। बिना रोटी तो जीव ही नहीं सकता। तन नो जन्म दिता है भोजन ने, ते तन जीवदा भी भोजन दे आसरे ते। ये भी मैं अर्ज करा। गुरवाणी ने चार हस्तियां नो महान पूजने का कहा। केड़ियां चार? भगत कबीर जी का बोल है धन गोपाल धन गुरुदेव। हे गोपाल तू पूजन योग है, तू धनता दे योग है। फिर कहने धन गुरुदेव, हे गुरु तू भी धनता दे योग है, तेरे करके गोपाल दा पता चलता है, नहीं ते गोपाल दा पता भी ना चले। फिर कहने धन अनाद भूखे कवल टेके। हे अन्न हे रोटी तुम ही पूजन योग है, धनता दे योग है। पेट दे च पै जाए ते गुरु भी चंगा लगता है, रब भी चंगा लगता, नहीं ते दोवें नहीं चंगे लगते। कबीर खुद कहते ने भूखे भगत न कीजे ये माला अपनी लीजे। एले अपनी माला, भूखियां भजन बंदगी नहीं होनी। धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद भूखे कवल टेके। फिर एक चौथा भी पूज योग दसदे ने भगत कबीर, धन ओए संत जिन ऐसी जाने तिनको मिलबो सारंग पाने। ओ संत भी पूजनीक ने जिन्हां ने इस असलियत नू समझे कि अन्न भी पूजन योग है, गुरु भी पूजन योग है, प्रभु भी पूजन योग है। तन रोटी है, ये बनिया रोटी तो है, ये जीवेगा भी रोटी दे आसरे ते। मैं एक दफा फिर दोहराना, बिंद ते जिन पिंड किया अगन कुंड रहा है। रकत बिंद करने में आ, तन किवें बनदे है लहू तो बिंद तो। ते लहू ते बिंद किवें बनदा है रोटी तो। और किस तो बन गए, भोजन तो ये तन रोटी तो बने, भोजन तो बना है, ये जीवेगा भी भोजन दे आसरे ते, बिना भोजन तो जी भी नहीं सकता। जीवन भर मनुख नू जड़ी प्रबल चिंता होंदी है रिजक दी, रोटी दी, ये भी मैर्ज करते हैं, कशिश रोटी दी है, उहदा एक कारण भी है, पानी दी ते बारिश भी होंदी है, रोटियां दी बारिश नहीं होंदी, पानी दे ते दरिया भी चलते ने, रोटियां दे दरिया नहीं चलते, पानी दे ते सरोवर भी होंदे, झीलां होंदियां ने, सागर है, रोटियां दे सागर कोई नहीं, रोटियां दे सरोवर कोई नहीं, रोटी लभनी पैंदी है। और भी सुन लो, सतगुरु दी बाणी कहंदी है हर जगह रोटी नहीं है, जिथे रोटी है उथे जाके लभनी पैंदी है, हर जगह नहीं है, हर जगह मनुख दा रिजक नहीं पिया, जिथे है उथे जाके लभना पैंदा है, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाने, जिथे रिजक पिया जिथे रोटी पई है, नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। महाराज कहंदे ने यही एक सच्चाई है, जिथे रिजक पे है उथे ही जाके लभना पैंदा है, खाना पैंदा है, जाना पैंदा है। किरत की बांधी जग फिरे चित बंद न धीरा, रिजक खिची फिरदा है मनुख नूं सब जगह, मनुखता दी सारी भज दौड़, पंछियां दी सारी भज दौड़, पशुआं दी सारी भज दौड़ रिजक, शरीर दा भजना दौड़ना रिजक, रिजक भजाई फिरदा, रोटी भजाई फिरदी है। मैनू फिर कहण देना तन रोटी है और कुछ भी नहीं है। रखत बिंद करने में आ, ये खून ते बिंद तो पैदा होया, मां की रखत पिता बिंदारा, मां दा लहू पिता दा बिंद किवें बनया, रोटी तो तन बनया है, रोटी तो ये जीवेगा रोटी दे आसरे ते, सारी जिंदगी फिर मनुख रोटी लभदा ही रहिंदा, रिज़क ही लभदा है, नोटां दे बंडल रोटियां दे बंडल ने और कुछ भी नहीं। मेरे पुत्र नू मिलदी रहे, पोतरियां नू मिलदी रहे, पड़पोतरियां नू मिलदी रहे, रिजक दी चिंता, रोटियां दी चिंता। तिजोरी विच सोने चांदी दा इकट्ठ, रोटियां दा इकट्ठ है, भविष्य दियां रोटियां, अज दियां नहीं है, सत्तां पीढ़ियां दियां, चिंता रोटी दी और कुछ भी नहीं। भावें सतपुरश गुरबाणी कहती है कोई होर चिंता तू करनी है ते कर ले, रिजक दी चिंता ना कर, ना कर चिंत चिंता है करते। जिसने जीवन बनाया जगत बनाया रिजक दी चिंता ओ करेगा, तू उद्दम ते करना है चिंता नहीं करनी, रिजक लभना ते है चिंता नहीं करनी, ना कर चिंत चिंता है करते, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। देखो किसी दे घर मेहमान होइए ते घर वाले नूं सारी फिक्र करनी पैंदी, किथे ठहराना है, की खिलाना है, की पिलाना है, किस तरह दा इसदा इंतजाम करना है। ये सारा ब्रह्मंड परमात्मा दा घर है, असी उसदे जीव, ओनू फिक्र है, ओनू फिक्र है, वो साड़ी चिंता दे च है, असी उसका चिंतन करिए, बस इन्नी गल है। उन्हें साडे नाल संबंध जोड़े हुआ है, सिर सिर रिजक संभा हेठा कर, काहे मन भव करया। बिल्कुल चिंता करता है। ईरानी सूफी संत सादी ते इसनों होर बड़े बाकमाल ढंग नाल बयान करता है। कहिंदा है गमे रोजी माखुर, कोई गम तू करना है, चिंता करनी है, कर ले, पर रोटी दा गम ना करें, रिजक दा गम ना करें। गमे रोजी माखुर, मजन और आ के दफ्तर रा के पेशे अस्ते फल ए जद, कल को नद पस्ताने मादर रा। सादी कहिंदा है बच्चे दा जन्म बाद दे चौंदा है, मां दे अस्थणा दे च रिजक दुध पहले बन जाता है। के पेशे अस्ते फल ए जद, तिफल कहिंदे ने बच्चे दा, के पेशे अस्ते फल ए जद, कल कुनद पस्ताने मादर रा, मां दे पस्तान दे च, मां दे अस्थणा दे च दुध पहले बन जाता है, बच्चे दा जन्म बाद दे चौंदा है। इत्थों तू शिक्षा क्यों नहीं लेंदा? रिजक पहले है, जीव बाद दे च है, जीवन बाद दे च है। गुरबाणी फिर इस तरह बयान करती है, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। रिजक पहले पैदा होंदा है, जंतु बाद दे च पैदा होंदा है, जीव बाद दे च पैदा होंदा है। गुरबाणी, पहले देते रिजक संभाहा, पाछे देते जंत उपाहा। मनुख नूं इस ते भरोसा नहीं आउंदा, इस गल ते भरोसा ना करना मानो परमात्मा ते भरोसा नहीं है, और वाकई परमात्मा ते भरोसा नहीं। पता है गुरु अर्जन देव जी महाराज की कहंदे ने, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिथ मन प्रगट आया। तत्काल, तत् उसे वक्त, इधर भरोसा बज गया, इधर मनुख की समाधि लग जाती, लीन हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता है। तत् ज्ञान इस मन प्रगट आया, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया। जिथे विश्वास पूरा बज जाए, विश्वास डोलदा है, भरोसा डोलदा है, और सारी जिंदगी डोलदा है। अरदास करना सतगुरु सानू सिखांदे ने, डोलन थे राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। की डोलदा है? भरोसा, सिदक डोलदा है, रोज रोज डोलदा है, भरोसा नहीं बजदा। अज मिलिया है, पता नहीं कल मिलना है कि नहीं। मैनू मिलिया है, पता नहीं पुत्रां नू मिलना है कि नहीं। पुत्रां नू मिलिया है, पता नहीं पोतरियां नू मिलना है कि नहीं। जिंदगी लंघ जाती है रिजक दी चिंता च। बगौर मुताला करना, उहदा एक कारण है, मनुख जीवदा जो तन ते तल ते पिया, ते जे तन दे तल ते जी रहा है, ते तन ते रोटी है, भोजन है, बनिया भोजन तो है, जीवेगा भी भोजन ते आस। बनिया रोटी तो है, जिंदा भी रहेगा रोटी दे आसरे ते। हुण मैं अर्ज करा, ये मन रोटी तो नहीं बनया, ये जीव आत्मा रोटी तो नहीं बने, ये संसार का हिस्सा नहीं है। ये तन रोटी तो बनया, संसार का हिस्सा। ये ठीक है, चूंकि प्रभु ने हर मनुख का रिजक उदे कोल नहीं बनाया, लभना पैंदा है। इस वास्ते मनुख ने बड़े उद्यम ते उपराले कीते ने, और इस तो बड़ी तामीर होई है। सारी तामीर संसार दे च मनुख कोलों करवाईए, दो रोटियां ने, ये भी मैं अर्ज करते, रेलां ने, मोटरां ने, गड्डियां ने, सड़कां ने, महल ने, माड़ियां ने, फैक्ट्रियां ने, कारखाने ने, मसला ते दो रोटी दा और है कि सारी भजदा। ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਹੈ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲੇਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੱਭ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ, ਲੱਭ ਲੈ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ, ਲੱਭ ਆਪਣੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲੇਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੰਛੀ, ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਦਾਣੇ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੀਵਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੌੜ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਦੌੜ, ਮਸਲਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤਨ ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਮਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਰੋਟੀ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਤਨ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਸਮਿਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੋਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਭੋਜਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤਨ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮਨ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦੀ। ਅਸਤਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰਿਜ਼ਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਏ। ਮਨ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੋ ਮਨ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਖਾ ਲਿਆਂਗੇ, ਛੇ ਖਾ ਲੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੇਟ ਤੇ ਭਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਸਵਾਦ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨੇ। ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। और साडे देश दे आयुर्वेद आचार्य इंज कहा करदे सन, आहार रोग आहार चिकित्सा, खाना पीना रोग है, खाना पीना अमृत है, खाना पीना जहर है, खाना पीना दारू है। क्यों ऐसा क्यों कह देता है? भूख है, खाना पीना अमृत है, एक एक बुरकी अमृत है, शरीर दी लोड़ां नु पूरा करेगी। भूख नहीं है, हुण एक एक बुरकी जहर है, रोग है। इस वास्ते वैद धनंतर ऐलानिया कहंदे सन, होर रोगां दा कोई कारण नहीं 90% आहार रोग, खाने पीने तो रोग पैदा होंगे। आहार रोग, आहार चिकित्सा, आहार दारू, आहार ही औषधि है, खाना पीना औषधि है, खाना पीना रोग है। कीड़ा खाना पीना रोग है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने ऐसा फरमान कीता है, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। इस होर दे की अर्थ करोगे? निकम्मे चकरा च ना पै जाना। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, होर हुण होर खाई जांदा, भुख ते है नहीं, दो रोटियां नाल पूर्ति हो गई। गुरबाणी ग्रामर दे मुताबिक यही अर्थ ने, मन मत नाल कोई अर्थ करे ते करदा फिर। बाबा होर खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं, खा रहे है, एक एक बुरकी रोग होवे, एक एक बुरकी जहर बनेगे, एक बुरकी शरीर दे अनर्थ पैदा करेगे। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार। जरूरत तो खादा होया तन नु रोगी बनाएगा, मन नु विकारी बनाएगा, शक्ति अदक बनेगी, उदी लोड़ नहीं। तो मैं अर्ज करा, तन भोजन है, मन भोजन नहीं है, पर भुलेखे करके तन दिया लोड़ा नु मन ने अपनी लोड़ समझ ले, तो उदे नाल की आउंदा है? तन ते लोड़ां दे तल ते सीमित रहिंदा है, तन दिया लोड़ां मन दे तल ते लोभ बन जांदियां। लोभ मन दे च आउंदा है, तन दे च नहीं आउंदा। तन ते तृप्त हो जांदा है, भुख मिट गई, तन ते साफ कह देंदा नहीं लोड़ हुण मैनूं। और सारियां ही तन दिया लोड़ां बिल्कुल सीमित ने, लोभ सीमित नहीं, भुखी नहीं सीमित। मनुख लोड़ा करके बेईमान नहीं आंदा, लोभ करके आंदा। मनुख लोड़ा करके भ्रष्ट नहीं आंदा, लोभ करके आंदा। मनुख लोड़ा करके धोखेबाज नहीं बनता, लोभ करके बनता। मनुख लोड़ा करके पापी नहीं बनता, लोभ करके बनता। कबीर, जहां लोभ तहां पाप है। लोभ जिथे उथे ते पाप होएगा, लब पाप दोए राजा में था, कूड़ हुआ सिकदास। अगर लोभ राजा है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते, पाप वजीर आजम है, उसका नाल ही रहेगा। लभ ते पाप दोवें कट्ठे रहेंगे, लोभ ते पाप दोहें कट्ठे रहेंगे। मैं फिर अर्ज करा, लोड़ा करके मनुख भ्रष्ट नहीं आंदा, लोभ करके आंदा। लोड़ा दी ते सीमा है, कितनिया लोड़ा ने, बिल्कुल सीमित ने, लोभ दी कोई सीमा नहीं। अरबां खरबां दी धन संपदा जमा हो जाए तां भी लोभ शांत नहीं होता, लोभ दी कोई सीमा ही नहीं। इस वास्ते इंज कह दई है, लखां पति भी मंगता है भुखा है भिखारी है, करोड़ां पति भी मंगता है भुखा भिखारी है, अरबां पति भी नंगा है भुखा है भिखारी है। बल्कि सतगुरु कहिंदे ने, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखी है, सारी सृष्टि का भी राजा बन जाए दुखी दा दुखी रहे। कारण शरीर दियां लोड़ां नूं जद मन ने लोभ बना लिया, लोभ दी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। गुरबाणी समझांदी है, मन तेरी लोड़ कुछ होर है। तू तन दी संगत करके तन दियां लोड़ां नूं अपनियां लोड़ां समझ बैठा है। तन ते बनया रोटी तो, भोजन तो ठीक है, तू रोटी तो नहीं बनया, फिर तू किस तो बनया? कहो कबीर ए राम की अंश, तू ते राम दी अंश है। मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हुण मैं इसका दूसरा पहलू बयान करा। जन्म तो ही तन दे अंदर भोजन दी भुख है, जन्म तो मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। ये कथा तन वास्ते नहीं, इहदे नाल कोई पेट नहीं भरना। अगर पेट भर सकता है तो फिर लंगर पानी दी कोई लोड़ ही नहीं। इस कीर्तन नाल तन दियां लोड़ां दी पूर्ति नहीं आउंदी। वाहिगुरू वाहिगुरू दा जप कोई तन दियां लोड़ां नूं पूरा नहीं करदा, इस चक्कर च ना पैणा। इह मन वास्ते, इह मन वास्ते। भोजन मेरे सामने पिया पर भोजन नाल मैं अपना तन ना जोड़ा, भाव बुरकी नूं मूंह च ना पावां, मेरी भुख नहीं मिटेगी। कीर्तन मेरे सामने हो रहा है, पाठ मैं कर रहा, पर मैं इस नाल अपना मन नहीं जोड़दा। यकीन जानो, बाणी पढ़द्या भी मन रोंदा पिटदा रहेगा, दुखी रहेगा, संताप ग्रस्त रहेगा, चिंतातुर रहेगा, सोगी रहेगा, भावें सारा दिन पढ़दा रहे बाणी। कहिंदे ने, मैनू मिलदे ने कई, अज असी चार सुखमनी साहब दे पाठ कीते ने, मैं कि तेरा चेहरा ते दसदा पे एक पंक्ति भी नहीं तेरे मन ने सुनी। उसे तरह ही सोग दे चाहे चिंता दे चाहे हंकार दे चाहे विकार दे चाहे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 36 प्रकार का भोजन मेरे सामने पे है, मैं बुरकी मुंह च नहीं पाई। चलो मुंह च भी पा ली है, स्वाद आ गया सर, पर मैं थले नहीं की थी, कंठ तो थले नहीं की थी। भुख नहीं मिटेगी, भुख नहीं मिटेगी। एक एक बुरकी ही अंदर जाएगी, भुख बाहर आएगा। मन भी भुख ये भोजन नहीं है। जन्म तो तन दे अंदर रोटी दी भुख है, भोजन दी भुख है। जन्म तो शरीर दे ना मन विच भजन दी भुख नहीं है। इतनी मर्ज करा, नहीं है। विद्वान इंज भी कहते ने, जेदे अंदर हर वक्त भोजन दी भुख है, भुख तो मुराद है भिखारी, हर वक्त मनुख भिखारी है। पर किसे मन दे अंदर भजन दी भुख पैदा हो जाए, सिर्फ भुख, बादशाहां दा बादशाह हो जाता है, शहन शाहां दा शहन शाह हो जाता है। इनू मैं दूजे नुक्ते नाल बयान करा। संसार दे मार्ग ते चल के बहुत कुछ प्राप्त हो भी जाए, अखीर दे च पता चलता कख नहीं मिले, कुछ भी नहीं, हथ खाली है। निरंकार दे मार्ग ते चल के, धर्म दे मार्ग ते चल के जे कुछ नहीं भी प्राप्त होया, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। नहीं परमात्मा मिलया, परमात्मा दी प्यास मिल गई है, उदी तड़प मिल गई है, उदी भुख मिल गई है। भगतां ने इस ते भी शुकराना कीता। पता है क्यों? किसे मनुख नूं भोगन भुख ही ना लगे भोजन दी, तन दे तल ते, तो आयुर्वेद आचार्य कहिंदे ने तन रोगी है, रोगी बीमार। 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होया, 36 प्रकार का भोजन परोस के उसके अगों रखे, कहिंदा नहीं मैनू भुख नहीं है। अगले कहिंदे ने 4 दिन का तू कुछ खादा नहीं, मंजे ते पिया, खा, कमजोर होंदा जा रहा है। वैद कहिंदे ने खा, कहिंदा भुख नहीं है। इतना जोर दा ताप उन्हें भुख नूं मार दिता है, भुख दे ताप नूं दबा दिता है। फिर जस उसनूं प्रेरदे आ नहीं खा, नहीं तो शरीर निढाल होवेगा, कमजोर होवेगा। वो खांदा है, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਆਪਦੀ ਗਿਆਤਲੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੀ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੰਤੂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਚ, ਉਹ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਰੀਕ ਤੰਤੂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਹੈ ਸਵਾਦ ਹੀ। ਜੋ ਤੰਤੂ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਿਥਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐਸੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਸਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ। ਕਿਉਂ? ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਜਨ ਦੀ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਗੀ। ਐਸੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐਸੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਤੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਾ ਮੁਨਸਬ ਸੁਧ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸੁਭਾਅ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਔਗਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਖੂਬੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਜਿਤਨਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਈ ਦੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ अपने विचारां दे नेड़े आवना, अपनी सोचनी दे नेड़े आवना, अपने चिंतन दे नेड़े आवना, मैं की याद करता रहना, मैं की सोचता रहना, मेरे अंदर केड़े विचार चलते रहते। अगर कोई इस नूं देखण वाला है तो गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने गुरमुख है एहो मन आर सी, कोई गुरमुख देखे ते गुरमुख है, इते मान गुरमुख है, इते अपने नेड़े आ गए, अपने विचारां नूं देखण लग पए। इन्हां गंदे विचारां नूं रोज रोज देखदिआं, इस गंदी सोचनी नूं रोज रोज देखदिआं, इस गंदे चिंतन नूं रोज रोज देखदिआं, आखिर इस दे अंदर घृणा पैदा हो जाएगी। पर बदकिस्मती मनुख अपने नेड़े आउंदा ही नहीं। इस वास्ते शेख सादी साहब कहिंदे ने तेरे बारे दूसरे का फैसला गलत होवेगा, दूसरा की जानता तेरे की विचार ने, तू की सोचता रहना है। यह जो मैं अर्ज कर दिया 100% लोग दूजियां बारे गलत फैसले करते, गलत फैसले करते, ये पापी है, ये पुन्नी है, ये तो कहण मात्र गल्लां होंगी। पर महाराज कहिंदे ने कहण मात्र खेड नहीं है, पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जा। जो असी करते हैं जिस कर्म दे च मन आउंदा है वो अंदर लिखे आ जाता है, उस वक्त लिखे आ जाता है, संस्कार बन जाता है। जिस कर्म दे च मेरा मन है उस कर्म दे संस्कार बन जाते हैं, जिस कर्म दे च मेरा मन नहीं है उहदे संस्कार नहीं बनते, अंदर लिखिया नहीं जाता। चोरी अंदर लिखी जाती है, क्यों? उहदे च मेरा पूरा मन आउंदा है, समाज का डर है, कानून का डर है, बाणी का पाठ मेरे अंदर नहीं लिखिया जाता, ना मेरी सावधानी आउंदी है, ना मेरी एकाग्रता आउंदी है, ना समाज का डर, ना कानून का डर। किसी भी शुभ कर्म के अंदर संस्कार नहीं बनते, बुरे कर्मों के बनते, क्योंकि बुरे कर्म नो मनुख पूरे मन नाल करता है। समाज का डर है, कानून का डर है, शुभ कर्म नो मनुख पूरे मन नाल नहीं करता। हर एक कह देंदा की करिए, मन ते जुड़दा ही नहीं। पर जब तू झूठ बोलदा है उहदे च पूरा मन आउंदा है, जब तू किसी नूं ठगदा है उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है, जब तू किसी नूं धोखा देंदा उहदे च तेरा पूरा मन आउंदा है, जब जेब कतरा किसी की जेब कटदा उहदे च पूरा उसका मन आउंदा है। बड़ी भारी एकाग्रता आउंदी है। किसी जेब कतरे ने नहीं आख्या जेब कटण लग्या मैं एकाग्र किवें आऊंगा, किसी डकैत ने नहीं आख्या डाका डालन लग्या मैं अपना मन एकाग्र किवें करा, एकाग्र हो जाता है। हर अभ्यासी ने आख्या, हर सत्संगी ने आख्या की करिए मन ते जुड़दा ही नहीं, मन ते एकाग्र ही नहीं आता। कारण क्यों नहीं एकाग्र आता? ना समाज का डर, ना कानून का डर, ते परमात्मा का डर बंदा मने ना ते गल खत्म। सारी जिंदगी कर्म कांड चलता रहेगा, होवेगा कुछ भी। ते पता है कर्म कांड किसनों कहते ने? जिस विच मन पूरा नहीं है, नहीं ये भी मैं सर, पूरी भावना है, पूरा मन है, हर कर्म भक्ति हो जाता है, भगवान नाल जोड़ देता है। कोई मन नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई यकसोई नहीं है, ये तो कर्म कांड चलता रहता है। कर्म कांड जन्म तो तन दे अंदर भोजन दी भुख है, मन दे अंदर भजन दी भुख नहीं है। कारण मन रोगी है, इस जन्म दा नहीं, अनंत जन्मा तो, अनंत जन्मा तो रोगी है और बेहोश है, अचेत है, भुख नहीं है। ये जिहड़ा वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप है, थोड़ा इसनों सुचेत करना है ते किधरे इस दे अंदर भुख पैदा हो जाए। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। जैसे मनुख पूरी एकाग्रता नाल वाहेगुरु कहिंदा है, वाहेगुरु दा अंदर संस्कार बन जाता है। ते जैसे वाहेगुरु दा संस्कार बनदा है अंदर, विकारां दे बने अंदर संस्कार, ਆਪੋ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਮ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਭ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਨਾਮ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਪਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਨਰਥ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਰਥ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਛਲ ਕਪਟ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਨਰਥ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਤਨਾ ਮਨ ਦਾ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਗ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਸੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਕਰੀਏ, ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੌ ਹਿੱਸੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮਨ ਅਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਣਾ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਗ ਮਿਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਆਸ਼ਰਿਤ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਸ਼ਰਿਤ, ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਤੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ, ਉਸੇ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਛਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਚੀਖ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਿਜ, ਦੂਜਾ ਜਨਮ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਜਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਮਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਸੁੱਤ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ। और मैं अर्ज करा संत नहीं मरदा, संत अपने घर दे टिक जाने। संत मुए क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत वापरे जो हाटे हाट बिकाए। संत जीवदिया जी इस तन तो उच्चा उठ जाता है, इसनों कहते ने जीवत मृतक, मुर्दे वांग मुरीद होए। जीवत मरे मरे फन जीवे, ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रहिए। बौल ना बौजल आया स्वास्थ्य चल दे पैने जीवदा पे। जीवत मरे मन दे तल ते मर गया, आज तक दी जो जिंदगी सी अहंकार आशत लोभ आशत काम आशत जो बने संस्कार सन जिन्हों दे जी रहे सी खत्म। जब खत्म होने लगती है भय उसे तरह ही पैदा होता है जिमें शरीर खत्म हो रहा है, डर उतना ही लगता है जिमें शरीर खत्म हो रहा है। कई इतों वापस मुड़ते हैं, एक नहीं चंगे चंगे अभ्यासियों ने कह दिता मैनु ज्ञानी जी ये की हो रहा है, असी तो छोड़ बैठे हैं तो खत्म होने लगे सी। मैं ठीक है खत्म होने लगे सी, अज तक जिस तरह की दुनिया जीवे आ वो खत्म होने लगी सी। तो जे किधरे डरदे ना भजदे ना नवा जन्म हो जाना सी, फिर मां मां नहीं दिखाई देनी सी, मां भी रब का रूप दिखाई देना सी, पिता भी रब का रूप दिखाई देना सी, फिर आ भी रब का रूप दिखाई देना सी, पत्नी पति भी रब का रूप दिखाई देना। मात पिता सुत बंधव भाई नानक होआ पार ब्रह्म सहाई, सारा परिवार निरंकार का रूप दिखाई देना सी, ते सारा परिवार की सारा संसार निरंकार का रूप दिखाई देना सी। जो दी से सो तेरा रूप गुण निधान गोविंद न अनूप, ए विश संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। जीवदा रहे तू पहले परिवार दे संसार दे, हुण तू जीवना सी निरंकार दे। जीवदा रहे अज तक तू पदार्थां दे, हुण जीवना सी परमात्मा दे। पदार्थां दा जीवन ते परमात्मा दा जीवन इत जमीन आसमान दा अंतर है। पहला जीवन वाकई खत्म होंदा है, द्विज दूजा जन्म होंदा है। तो भय उतना ही पैदा हो जाता है जिमें शरीर की मौत। चंगे चंगे अभ्यासी जिन्होंने मैनू दसिया तो मैं कह किधरे उस भय न एक पासे सुट दें दे, किधरे पहले बोध होंदा, बड़ा कीमती अवसर गवा दिता। तो जिन्होंने मैं दसिया कि कोई बने तो डरना ना, तो कई ने रोंद आख्या खेड बनी ने नहीं बनी, उदों डर करके मुड़ गए वापस हो गए। तो मैं अर्ज करा ऐसा महसूस होगा अगर कोई अभ्यास करता है मैं खत्म हो रहा, वो जन्मां जन्मांतरां दे संस्कार जिन्हां दे अज तक जीवदे रहे हां खत्म हो गए, एक नवी दुनिया का जन्म आउंदा है। ऐसी दुनिया जो कदी नाश नहीं आउंदी, ऐसी दुनिया जिस दे सदा नवीनता बनी रहिंदी है, महारस बनिया रहिंदा है, महा आनंद बनिया रहिंदा है। उसे नूं कह देंदे ने हुण असी संसार तो निकल के निरंकार दे चलीन हो गए, हुण पदार्थ तो निकल के गोविंद दे चलीन हो गए, गोविंद दे चलीन होके गोविंदा रूप हो गया, बूंद सागर दे चलीन होके सागर हो जाती है अलग नहीं रह जाती, दरिया सागर दे चलीन होके वो सागर हो जाता है, गंगा नर्मदा जमुना नहीं रह जाती, वो सतलज ब्यास नहीं रह जाता, वो दजला फरात नील नदी नहीं रह जाती, वो तो सागर हो जाता है। परमात्मा दे चलीन होके ना मनुख हिंदू रह जाता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, परमात्मा दे चलीन होके मनुख परमात्मा ही हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है। एवें नहीं कबीर ने कह दिता सी ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परां। जिस रब दे चलीन हो गया कबीर ओ रब मुसलमान नहीं है, वो रब हिंदू नहीं है। कलगीधर पातशाह कहने नमस्तंग अम अजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है परमात्मा तैनो, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तू सारे थावां दे वसदा है, तेरा कोई एक मुलक नहीं, सारा ब्रह्मंड तेरा मुलक है। जैसे जब कोई परमात्मा विच लीन आउंदा है ये सारियां दीवारां गिर जांदियां ने, भाषा की दीवार, मुल्क की दीवार, मजहब की दीवार, जात पात की दीवार, तरह तरह के संस्कारां की दीवारां ये सारियां गिर जांदियां ने, मनुख निरंकार का रूप हो जांदा है। उसे नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान पे करदे ने, गुर किरपा जै नर को कीने ते ए जुगत पछाने, नानक लीन भयो गोविंद सिंह ज्यो पाने संग पाने। जिस दिन बूंद सागर विच लीन होंदी है ओही जाने सागर हो गए, असीम हो गए, उन्हें नापी तोली नहीं जा सकते। असीम होने की संभावना मनुख के अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख रजदा नहीं असीम होना चाहता। महान होने की संभावना मनुख के अंदर छुपी हुई है, ताई ते मनुख किधरे राजी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। मैं फिर अर्ज करा, जितने चिर तक मनुख नूं परमात्मा नहीं मिलिया रजेगा नहीं, तृप्त नहीं होवेगा, सुखी भी नहीं होवेगा, कुरलांदा रहेगा, रोंदा ते पिटदा ही रहेगा। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति है, जीवन मिले है परम जीवन की प्राप्ति लई, परम जीवन परमात्मा है, यह जीवन संसार है। इस संसार तो उच्चे उठ के निरंकार का जीवन प्राप्त करना इस जीवन का लक्ष्य है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, इसे जीवन विच इस लक्ष्य नूं असीं प्राप्त कर सकीए। यही तेरी अवसर यही तेरी वार, घट भी तर तू देख विचार, इस अवसर नूं गवाह ना देगा, ये अवसर हथों चला ना जाए। वारी मिली एक अवसर मिले है, भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया। तू चोटी दा धनवान बन गया, गुणवान बन गया, साइंटिस्ट बन गया, मिनिस्टर बन गया, चौधरी बन गया, सब रस्ते दे पड़ाव ने, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोंदा रहेगा, पिटदा रहेगा, कुरलांदा रहेगा, दुखी रहेगा, संतापग्रस्त रहेगा उतने चिर तक जितने चिर तक परमात्मा नहीं मिल जाता, अकाल पुरख नहीं मिल जाता। सतगुर रहमत करन सारिया ते बख्शिश करन, ऐसी सूझ देन, ऐसी समझ देन, ते असी उसका पूर्ण तौर ते यतन करिए ताकि इसे जीवन विच परम जीवन नूं प्राप्त कर सकीए। यही धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का उपदेश है, संदेश है। इतनी विचार इस वक्त प्रवान करनिया, कल सवेरे शाम ते परसों सवेरे की हाजिरी भर के दासा ने इतों फिर झांसी चले जाने, सारे जथे भी झांसी जाणगे, फिर कलकत्ते विसाखी थे, फिर दासा ने धन गुरु अंगद देव जी महाराज के 500 साल शताब्दी पुरब ते खंडूर साहब जाना, अमृतसर, पटियाला, होर पंजाब के वक् वक् पिंडां विच 500 साल जयंती के संबंध विच दास ने हाजरियां जो है भरनिया ने, ते हुण जिहड़े नाल आए हुए जथे ने वाकई अपने अपने फुलां की महक लैके आए ने। इन्हां कोल जो कला है, जो प्रभु ने दिती है, जो गुरु ने दिती है, सतगुर रहमत करन इन्हां दी कीर्तन दी धुनां दे नाल वो आप भी करते नाल जोड़न ते थानू भी जोड़न दा जो है उपराला दे सकन। इस तरह तुसी भी जुड़ सको ताकि सुनना ते सुनाना दोहां दा सार्थक हो सके। ये अज दा कीर्तन प्रबंधक सज्जन तुहाडे सामने सारी लिस्ट सरवण करा देंदे ने। पहले आरंभता करनगे अमृतसर तो आए भाई साहब भाई हरजीत पाल सिंह जी, दूसरी लिस्ट जो नाम है सारे दे सारे प्रबंधक थोड़े सामने इन्हां दे नाम सुनाई जांदे ने। जो कुछ आपने सरवण किया सारेयां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बोल चुकदी शमा फतेह प्रवान करने।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

मुख उचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लखे बधरो सुने, जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु सत्संग जीओ, फतेह प्रवान करने, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया भर के इतिहासक ग्रंथां नूं वाचिए पढ़िए, इतिहास दे च दो तरह के मनुख ही छाए हुए ने। इतिहासकारां ने अपनी कलम दे राही, अपने दिमाग दे राही सोच के जो लिखे है, उन्हां दी कलम दो तरह के मनुखां दे आले दुआले घूमदी रही है। सिर्फ एक मुल्क नहीं, सारी दुनिया का जो इतिहास है वो सिर्फ इंज कह लो दो तरह मनुखां का ही इतिहास है। केड़े? प्रथम ओ जिन्होंने जगत की झोली दे कुछ पाया है, कुछ दिता है, कला, ज्ञान, विज्ञान, सूझ समझ, धर्म, सुख, संपदा, कुछ भी झोली दे पाया होवे, उन्हां दा इतिहास है, उन्हां दी गल है। दूसरा उन्हां दा इतिहास है जिन्हां ने खोया है, खूब खोया है। जो खो नहीं सकिया, जो दे नहीं सकिया, इतिहास दे उसका कोई जिक्र नहीं है, उसकी कोई गल नहीं है। तुसी पढ़ो दुनिया का इतिहास, बस दो तरह के ही मनुखों का इतिहास है।

साहब आप चल के गए, ओदा बुआ खड़का के उनु राजी कीता। ओ भाई वीर सिंह ने जिवे जख्मा नु मलम लगदी है, मलम ये प्रेमे कोड़ी दे ओ सत्संग करन वाली है, जे बाहर ही गेट जख्मा नु जिवे मलम लगी, धीरज होर मिल गया ते ओ

छोटा कष्ट जहान वाले सुन लो मैं वड्डी गल कह रहा हूं मेरा कष्ट चला जाना क्यों मैनू रब लभ पिया वड्डा घर लभ पिया।

तन भी कंचन हो गया मन भी भरी संगत महाराज कहते आज तो एदा नाम मुरारी है प्रेमा कौड़ी महाराज कहते मुरारी नाल कौड़ी बोलना औखा होगा अख सत एदा नाम सी मुरारी रख दे हूं एक जकारा देना जेड़ा मैं हिल गया पढ़ गुरु अमरदास जी ने नजर करके ए मुरारी प्रेम कौड़ी नू मुरारी नू ए नजर करके एहो जी अवस्था ते पुजा दिता के नाम दूजे नू जपान वाली सत्या दे दे दूजे नू नाम

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे घर तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारियां ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो तरंग
0: संतजना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदहार
0: आप त्रै लोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आज जाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नवही खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सुहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये पल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सत्य ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सत्य ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: Ek Oankar Satgur Prasad Asa Mahalla Chautha Shant

पौड़ी बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच।

सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दानू झंडा तलीका जे मिले तमस्तक लाइए।

0: तुवा पुरा तपे का सतगिर तुवा हो काजुगरा थगन का पूरा गैर तुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अशय सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे सुरख पठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाप भगत करनी।

ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो। महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे निदारी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना की वे तग आया पे बते।

कोठे मंडप माणिया लाए बैठे कर पछारिया चीज करन मन भावदे हर बुजर नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मेहनत मरण वसारिया जरिया जो बनहारिया जरिया जो बनहारिया।

छोड़ देता है ते उदासी बन गयो। किस कारण ग्रह तजो उदासी, किस कारण एव बेख निवासी, किस वखर के तुम बन जा रे, क्यों कर साथ लंगाओ पारे। ते राम गली मल्ला पहला सिद्ध गोष्ठ। हुण सतगुरु कहिंदे ने गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन के ताई भेख निवासी। परमात्मा दे दर्शन वासे भेख धारण कीता है नहीं, गुरमुख खोजत भय उदासी। उदास होया निराश होया जगत तो गुरमुखा नु लभदे पया, थोड़े दर्शन करन वास्ते बाणा पैने कटाक्ष कीती है। क्यों? योगी कहिंदन सानू ग्रस्ती उपदेश नहीं कर सकता, असी ग्रस्ती कोल शिक्षा दीक्षा नहीं है। सतगुरु ने बाणा त्यागियां दा पहने लंबी चौड़ी सिद्ध गोष्ठ हुई। किसे वक्त अर्ज करांगे सारी लंबी बाणी है धन गुरु ग्रंथ साहब दे च। ते सिद्ध मामूली पद्धर दे मनुख नहीं सन, साधना कर करके इन्हां ने उमरां भी बड़ियां लंबियां कीतियां हुईयां सन, प्राणायाम करके कुछ सिद्धियां भी सन। इन्हां दे प्रश्न भी बड़े उच्चे सन। कहिंदे ने मनुख ये हौला है, किस तरह इहदा प्रश्न हौला जिहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये मनुख महान है, किस तरह इहदी समस्या महान है। इहदा प्रश्न बड़ा उच्चा है, इहदा सवाल बड़ा उच्चा है। कई दफा मनुख की असलीयत उहदे सवालों तो भी पता चल जाता है, ये कित्थे खड़ा है, ये की है। तो योगियां दे प्रश्न बड़े बुलंद सन, बड़े उच्चे सन, और ये सिद्ध गोष्ठ दे दर्ज ने। सवाल करते ने सिद्ध, जवाब देते ने गुरु नानक। सिद्धां नू जवाब देते ने, मौलवियां नू जवाब देते ने, हरिद्वार ते बनारस दे पांदियां नू जवाब देते ने, मौलवियां नू और बड़े बड़े हुक्मरानां नू जवाब देते ने। सारे गुरु नानक ते सवाल करते ने, गुरु नानक किसी ते भी सवाल नहीं करते, सवालों का जवाब देते। आप भी ज्ञात ली अर्ज करा, सवाल एक बोझ आता है ते सवाल दुख तो निकलता है, सवाल तो एक समस्या है। इस वास्ते भारत देश दुखी बंदे नो कह देंदे ने कोई सवाल ही जापदा है, ऐते कोई सवाल ही जाप, सवाल निकलदा ही दुख दे चल। हां मनोरंजन नावें में पुछदा पे उपरों उपरों गल वखरी है, अगर कोई सवाल गहराई चो निकले है ये उदी समस्या आती है, ये उदी लोड़ आती है। और सवाल दा बोझ उदों हिरदे तो उतरदा है जब सही जवाब मिल जाए, सही उत्तर मिल जाए, नहीं तो प्रश्न बोझ बनया रहिंदा है। पढ़ लो जन्म साखी, हरिद्वार दे ब्राह्मण गुरु नानक दे धड़ा धड़ सवाल कर दें, बनारस दे पांदे कर दें, सुमेर दे जोगी कर दें, जद्दा दे खाना खुदा ते मदीने दे हाजी मौलवी आलम फाजल गुरु नानक दे सवाल कर दें। गुरु नानक किसे ते सवाल नहीं करते, सवालों का जवाब देते ने। मक्के दे जिहड़ी पहली गल पुछी गई होए, पुछन खोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होए, दसो कुरान दी आयतां पढ़दे ने ते कुरान दे अर्थ करदे ने, एनी ए महान किताब है, मुकद्दस किताब है, एदे च इतनियां कीमतियां गल्लां ने, इस्लाम महान है। तुसीं दसो हिंदू वड्डा है के मुसलमान, पुछन खोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, बाबा आखे हाजी हो शुभ अमला बाजो दोनों। ना हिंदू वड्डा है ना मुसलमान वड्डा है, जिदे कर्म उच्चे ने जिदे आमाल उच्चे ने बस ओही उच्चे। हर जगह सतगुरु देव जी महाराज जवाब देंदे ने। सुमेर दे पर्वत के जो जोगियां दे नाल लंबी चौड़ी गोष्ठी हुई है, तो किसी वक्त फिर अर्ज करांगा। लेकिन जोगी कहिंदे ने ए बाणा क्यों पहने है, किस कारण ए भेग निवासी, किस वखर के तुम वण जा रहे, क्यों कर साथ लंगाओ पारे।

मैं नाहीं कछ हो नहीं कछ आए न मोरा अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। भगत सदना जी भक्ति काल दे दौर दे ही सिंध प्रांत हाल पाकिस्तान दे पैदा हो जाए। पेशे तो आप कसाई सन, रोज बकरे वड़ के उना दा मास वेचना नित दा धंधा से। इतनी कठोर किरत ने कीर्ति करन ते किवें मजबूर कीता, इतने कठोर पेशे ने एक ऐसा कोमल दिल किवें पैदा कीता, इहदा एक पिछोकड़ है। कहिंदे ने रात दे वक्त बादशाह दे अहलकार आए ते उन्होंने मास दी मंग कीती थोड़े जिहा, शेर दो शेर। ते सदना सोची पै गया जे बकरा मैं वड्या ते बाकी दा मास बेकार जाएगा सवेरे तक। उन्हें बकरे दी पिछली एक लत वड्डण दी सोची ते भाई बाकी इसनू सवेरे जबा करांगे। छुरा लेके जैसे बकरे दी लत वड्डण वास्ते गया, इसे ही कठोरता दे चों दया उत्पन्न हुई। इसे ही महान पत्थर दिल भावना दे चों भक्ति भावना दा संगीत फुटिया। जमीर दी आवाज ए सारी रात तड़पेगा। बकरा छुरा हथों गिर गया। बादशाह दे अहलकारां नूं कह दिता, अज तो मैं कसाई नहीं, हुण मैं अज तो बकरे नहीं वड्या करांगा, अज तो मैं अपने अहंकार नूं ते कठोर नूं वड़ना है, अज तो मैं अपने विकारां नूं जबा करना है, अज तो मैं अपने पापां ते गुनाहां नूं जबा करना है, मैं इस तरीके नाल धंधा बदल लिया। कदी विचार करिए, भगत भी कसाई ने पर वो अपने विकारां नूं वड़दे ने, औगुणां नूं वड़दे ने, पापां नूं वड़दे ने। ते जो अपने पापां नूं जबा करन विच असमर्थ होया, जो अपने औगुणां नूं जबा करन विच असमर्थ होया, कुदरती गल है वो बाहर कतलो गारत करदा है, वो बाहर मार कुटाई करदा है। अपने आप नूं जबा करन लई एक विशेष किस्म दी छुरी चाहिए, जो विशेष किस्म दे लोहे नाल बनी हुई है, जिसका जिक्र पहले बादशाह गुरु नानक देव जी महाराज करते ने। सच की काती सच सब सार, घाड़त तिसकी अपर आवार। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज किसी शेख कसाई नु मुखातब होकर ही यह शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि सच दी छुरी होवे और सच दी टकसाल देते उसकी घाड़त होवे, सच दी उसनु पान धार लगी हुई होवे,

0: सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहने जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: Family Care Pharmacy.
2: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

भगत रविदास जी महाराज उस दौर विच बनारस विच पैदा होए ने, जद के भगती भाव दे संगीत नाल भारत दा कौणा कौणा सरशार होया होया सी। हर पासे भगती लहर, हर पासे भगत भावना विच डुबे हुए महापुरुष साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक है, वैसे ता हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे, हर युग विच हर समय विच भगत होंदे रहने संत होंदे रहने, लेकिन भारत दा मध्य काल भगती काल मनिया गया, जिस देच चौं दिशा देच भगत ही भगत पैदा होए। उसी भगती काल देच सूफी फकीरा ने भी अपने अमर संगीत दे रहे इस देश नूं अध्यात्मिक तौर ते सरसब्ज कीता और मानसिक तौर ते उच्चा कीता, जीवन दी जाच दसी। रविदास जी महाराज उन्हां ही सिरमौर भगतां विचों एक महान भगत ने, पेशे दे चमार पर चमड़े तो उच्चे जीण वाले, पेशे तो मोची चमड़े दा कम करन वाले, पर शरीर दे चमड़े तो उच्चे होके उन्होंने सारी जिंदगी बतीत की। शरीर दे तल दे उते जो जी रहा है, चमड़ी दे तल दे उते जो जी रहा है, इंद्रियां दे तल दे उते जो जी रहा है, वास्तविक चमार ते ओही है, क्योंकि वो वेखदा है चमड़े नूं, चमड़े नूं ही सवारना जिंदगी दा मनोरथ है, चमड़े खलड़ी दा ही रस मारना जीवन दा लक्ष्य है। ऐसे पुरुषां नूं चमार आखिया जा सकदा है। चमड़े दा कम करदिआं होइआं सुरत चमड़े तो उच्ची रखनी, ए कोई भगत रविदास जी महाराज तो सिखे। उन्हां दा काल ऐसा सी कि चारों पासे रविदास ने अपनी भक्ति संगीत नाल प्रभावित कीता। हैरानगी दी गल है कि अनपढ़ जद विद्यक मंदरां दे दरवाजे भी आप लई बंद ने, धार्मिक मंदरां दे द्वार ते बंद ही सन, लेकिन ऐसी अगम्मी विद्या आप दे अंदरों फुटी, ऐसा अगम्मी संगीत आप दी चेतना दे चों प्रफुल्लत होया। दरअसल ये हकीकत है कि परमात्मा जद भी किसी दे अंदरों प्रगट होंदा है, बस वो गीत राही संगीत राही। संगीत और गीत परमात्मा दे बहुत निकट है, बहुत निकट है। संगीत एक कला है, गीत एक कला है, ते परमात्मा स्वयं भी एक कलाकार है, ऐसा महान कलाकार कि उसकी कला चारों पासे सानू देखने नूं मिलदी है। एक निक्का जिहा बीज धरती विच बो के जदों अंकुरित होंदा है, कोमल रूप उसका धरती तो बाहर निकलता है, सहजे सहजे विकसित होंदा है, शाखां पत्ते फिर उस दे चों जद फुल खिड़दे ने, फल लगदे ने, एक ऐसी महान कला है कि उस अदुत्ती कलाकार नूं दाद दित्ते बिना रह नहीं सकदा मनुख अध्यात्म वासी। उसकी कला चारों पासे फैली हुई है, सागर दे चों भाप उठती है, उमड़ उमड़ के वो चारों पासे बरसती है, एक महान कला है। पहाड़ां दे झरनियां दी रफ्तार और गुंजार, चारों पासे दाए वातावरण दरअसल उस महान कलाकार दी कला दी ही प्रदर्शनी है। कदी कदी संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार और लेखक लोग अपनी कला दी खास रूप विच प्रदर्शनी कराया करदे ने, पर उस महान कलाकार दी प्रदर्शनी कला दी हर वक्त हो रही है, हर थां ते हो रही है, जिस पासे भी निगाह मारीए कला ही कला है, चाहे आसमान ते झात मारीए, चाहे सागर ते निगाह मारीए, चाहे पहाड़ां दीआं चोटियां नूं वेखीए, ते चाहे धरती ते निगाह मारीए, चाहे पशुआं नूं वेखीए, पक्षियां नूं वेखीए, बनस्पति नूं वेखीए, हर थां ते उसकी कला उजागर हो रही है, प्रगट हो रही है, और वो ऐसा कलाकार है
ਕਿ ਹਰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਚੋਂ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਔਰ ਮੋਏ ਹੋਏ ਢੋਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਮਧੁਰ ਕਲਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਨ, ਕਹਾਂ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਆਲਮਾਨਾ ਹੈ, ਫਿਲਸਫਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫਿਲਸਫੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਮਧੁਰ ਅਮਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੋਚੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ ਚਮਾਰ ਖੋਜਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੇ ਔਰ ਜੁਲਾਹੇ, ਮਾਮਾਰ, ਕੁਮਾਰ, ਨਾਈ, ਧੋਬੀ, ਕਸਾਈ, ਛਿੰਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਸਾ ਛਿੰਬਾ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦਾ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਬੁਣਦਾ, ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ

0: Washington.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है। इस नु खरीदन या वेचन लई तुहानु चाहिदा है एक अजिहा रियल्टर जो तुहाडे लई काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजिहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वध दे तजर्बे नाल रीमैक्स ते टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन। मार्केट दी पूरी समझ नाल तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरनगे गुरदयाल सिंह बाद। सो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही सलाह लई अज ही गुरदयाल सिंह बाद नु 604-351-5511 ते कॉल करो। 604-351-5111।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जान्यो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थकां, जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं, हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं, इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख,
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਕਨਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਟਿਕਾਈ। ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਟਿੱਕ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਕੋਰ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਕੋਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਟਿੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਏ। ਚੰਦਰਮਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਮਾ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਚਕੋਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ

0: ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨੇਕ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੀਮ ਭੇਰੂ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਠੇਠ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਆਪ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੁੰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣੇ। ਸਮਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਆਪ ਗ੍ਰਸਥੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਸੀ। ਸਮਸਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਠਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਛੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ, ਲੀਲਾ ਚਲਿਤ ਵਖਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਖੜ ਇੱਕ ਨਾ ਆਵੜੋ ਬਨ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਦੀ ਤੱਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਦ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਟੇ, ਅੱਜ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਘਰ ਲੋਟੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੁਪਤਨੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ तो पति दे दुख देच पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है जब कोई महान दार्शनिक महान कवि किसे उलझन देच फसदा है और उस तो किसे समस्या का समाधान नहीं होता या उसके दिमाग देचो गीत दिया लहरा नहीं निकल दिया तो जेड़िया उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे देच पैदा होता है ये वो कभी ही जानता है ये वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नु सौ गए। आज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया पर पत्नी ने आख्या नहीं तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो। रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उन्हों निभाओ प्रभु भक्ति करो नितनेम करो फिर इस ग्रंथ नो लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे आप रहमत करनगे। किन्हें पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने सोच दे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चो उभरे पर कुछ उभर भी दिखाई नहीं देंदी। आज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बने आया है जिदे च कोई चमक दाया मामूली जिया तारा भी नहीं स्यारा भी नहीं। कहने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ भाई साहब भाई गुरदास जी कहने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां सुनहरी स्याही दे च लिखियां जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखिया है। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए इशनान नहीं कीता नितनेम नहीं कीता बंदगी नहीं कीती तां जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन कहन लगे पंक्ति फुर गई सी लिखण लई वापस आ गया। ग्रंथ संपूर्ण हो गया ग्रंथ मुकम्मल हो गया। गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्मी शक्ति पद्मावती भोजन बनाने दे चलेन। इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलापदे हैं। घर विच प्रवेश होंदे हैं की देखदे ने पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी पर तू भी भुल गई मैनू खिला के ही तू खांदी होंदी सी अज की हो गई बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना थानू बहुत खुशी हुई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया है मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है। हां संपूर्ण हो गया तुसी खुद ते कहे और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने मैं खुद वेखिया ने। भजे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया गया ने अखर पर प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे। जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए अश्चर्यता ते रहस दे चलीन हो गए। एकदम आप ते सुरूर तारी होया अरदास की थी हे त्रिभुवन धनी हे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा ते मैं आप लिख लेंदा। ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां? तां कहिंदन अलहाम होया, आकाशवाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जयदेव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच ये कमी पाई, खुद लिखियां ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है, इसका करता मैं। ते जद भी किसे भगत नू इस प्रकार दा अहंकार हो जांदा है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टूट जांदा है। ते तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धन्यवाद दे नाल भरे जयदेव, अश्कबार हो बार बार सजदे छोए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, आज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही काम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमे आया। श्री जयदेव जी महाराज का यह गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां दी दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने, और इन्हां गीतां विच भक्ति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समो दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आप दा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण कीता होया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयं, हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरत लीन करिए, तो उस राम दी याद तशरीह कर देने, उस राम दी आप व्याख्या कर देने। इस पदे विच परमाद पुरख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा, और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है, परमाद पुरुख वो फिर पूरे होया है। पुरुख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमे आया है, व्यापक है, वो पुरुख है। परमाद पुरुख मनोपिमंग मनोपमा तो रहत है, दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नूं नहीं लिया सकदा। मन पूर्ण तौर ते जिसनूं सोच नहीं सकदा, मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकदा, ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकदा, उनूं जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा, उनूं अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों? कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। जबान जिथे तक कथन करती है उत्थों तो भी अगे की कल्पना मन कर सकता है। कन जिथे तक सुन सकते ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकता है। कल्पना की प्रवास बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना की प्रवास कितनी उच्ची क्यों ना हो, कितनी दूर की क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आउंदा, वो किसी दी कल्पना विच नहीं आउंदा। मन दी सोच तो परे, मन दी विचार तो परे, इस वास्ते आप कहंदे मनोपिमंग मनो उपमा तो रहत है। परमाद पुरुख मनोपिम सत आदि भाव रतन ओ सत चित आनंद आदिक भावा दे नाल रथ आया है। ओ सत है, ओ चित प्रकाशमयी है और ओ आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति देख राम दी व्याख्या इंज कर देने, परमाद पुरुख मनोपिम सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जांदा है, हैरान हो जांदा है, विस्माद हो जांदा है, जिन्हू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिन्हू सोचे ते पूरा सोच ना सके और जिसनू चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके, फिर भी वो बच रहे जिन्हू सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके, उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है। उत्थे आश्चर्यता ते रहस्य दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य विच जीवदा है, एक कवि रहस्य विच जीवदा है, एक संत रहस्य विच जीवदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग दा बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदा मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनू पूर्ण तौर ते सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होंगी, रहस्य नहीं पैदा होंगा, विस्माद नहीं पैदा होंगा। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने जितने विद्यालय ने ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावे कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया है, विस्माद नु खत्म जरूर किया है। मनुख दी दुनिया विच जो एक विस्माद सी, रहस्य सी, वो खत्म हो गई, वो अज देखण नु नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ए विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता दा जन्म ही विस्माद तो होंदा है, कविता दा जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वो भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपिया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपिया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है, तो रहस्य पैदा हो जाता है। फिर विस्माद मंडल तारी हो जाता है, तो कवि विस्माद विच जीवदे ने, संत विस्माद विच जीवदे ने, भगत जयदेव जी महाराज कहंदे ने परम अद्भुतन ओ परिपूर्ण परमात्मा परम आश्चर्य रूप है। परकृत परम ओ प्रकृति तो परे है। कहंदे ने रविंद्र नाथ टैगोर सागर तो इशनान करके वापस आ रहे ने, रस्ते विच एक गंदगी दा ढेर पिया, सवेर दा वक्त है, सूरज दिया किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। ये सारा दृश्य वेख के रविंद्र नाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दिया किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारियां दे तू है पर फिर भी सारियां तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने परम अद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसदा चिंतन करन दे नाल सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां। हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जांदी है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लैंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है, प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत्यादि भाव रतन परमद्भुतन परकृत परन जग चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है, परमात्मा दा नाम है, उसनु तू पान कर, उसने ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगा चल के इसे ही पद विच श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने कि नदनोद जस सिमरणे न जन्म जराद मरण भयं। नहीं आउंदा जिदे सिमरण करन दे नाल जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते बुढ़ेपे दा दुख। साढ़े देश के ऋषि मुनिया ने ये तीन दुख बड़े प्रबल मने ने, जन्म दा दुख, मरण दा दुख ते बृद्ध अवस्था दा दुख। भगत कबीर भी इसनु मनदे ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़े कुल तन ते है पर कुछ कर नहीं सकता, दिमाग है पूर्ण तौर पे सोच नहीं सकता, हाथ पैर हैगे ने पूर्ण तौर पे कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस वास्ते वृद्ध अवस्था नु, पूर्ण वृद्ध अवस्था नु रोगमयी अवस्था करके आख्या। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने जेदा सिमरन करन दे नाल नहीं आउंदा जन्म दा दुख, मरण दा दुख, क्योंकि मुड़ के जमना नहीं तो फिर मरना ही नहीं, ते नहीं आउंदा बुढ़ेपे दा दुख। साहिबगुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करदे ने, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, हरी दा जो जन है ओदे नेड़े ए जन्म मरण ते बुढ़ेपा जरा नहीं आउंदे। इत्थे इक तरक खड़ी होवेगी, चलो जन्म मरण तो भगत बच जांदा है, पर बुढ़ेपे दे रोग तो किस तरह बचता है। एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे, गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुरत ज्ञान। जिद्दी सुरत प्रभु नाल जुड़ी हुई है, जिथे आत्म ज्ञान मौजूद है, ऐसा बंदा चाहे शरीरक तल ते वृद्ध भी हो जाए पर ओदिया उमंगा हुलास दे कोई फर्क नहीं पैंदा, ओदी चेते शक्ति दे कोई फर्क नहीं पैंदा, उसके चेहरे उत्ते ताजगी बनी रहती है, उसके चेहरे उत्ते आनंद बनिया रहिंदा है। उन्हों वेख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बुढ़ा हो गया है, ये वृद्ध हो गया है, ये कमजोर हो गया है, नहीं। उसका हुलास, उसकी उमंग, उसकी तुरंग और उसकी चेते शक्ति पूर्ण तौर पर कम कर दिए, प्रभु की बंदगी का एक महान फल है। इस वास्ते आत्मदर्शी पुरुषा ने कहा है कि नाम सिमरन करने वाले दे कोल बुढ़ेपे का रोग भी नहीं आता। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। श्री जयदेव जी महाराज इस पावन पवित्र पदे दे फरमान करते हैं, ना दनोद जस समरेन ना जन्म जराद मरण भयं, इच्छस जमाद पराभयं जस्वस सुकृत कृतन। जे तेनू इच्छा है ऐ बंदे कि तू जमा दा तिस्कार करे, जन्म मरण तो बचे, ता जस सुकृत उस परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर, जसवस सुकृत कृतन शुभ कर्म कर, ते परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर। भाव परमात्मा दा जो जस है यही सुकृत है, यही पूर्ण तौर ते शुभ कर्म है, इसनु तो कर्म। इसे एक शुभ कर्म तो अनेका शुभ कर्म जन्म लेंदे ने, अगर ये एक शुभ कर्म नहीं तो फिर कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ कर्म वो है जद हिरदा शुभ दे नाल जुड़दा है, तो शुभ परमात्मा है, शुभ ईश्वर है। जद शुभ दा चिंतन किया जाता है तो हिरदा शुभ हो जाता है, ते जैसे हिरदा शुभ होता है ऐसे ही मनुख शुभ चिंतक बन जाता है। वो हर एक दी शुभ कामना करता है, वो हर एक दा शुभ चिंतक बनता है, पर शुभ होए बिना शुभ चिंतक होना बहुत कठिन है, शुभ होए बिना शुभ कामना करनी बहुत औखी है, कामना मैलियां होनगियां और चिंतक चिंतन जो है माड़ा ही जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा का कल्याणकारी नाम, उसका जो शुभ कर्म है, उसका चिंतन ओ तो कर। इच्छस जमाद प्राभयं जस्वस सुकृत कृतं। भवभूत भाव समव्यन प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं, जो त्रैकालदर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमया है, व्यापक है, भवभूत भाव समव्यन जो हुण भी है, पहले भी सी, अगावी जो है, होवेगा, जो हर समय मौजूद है, त्रैकालदर्शी है, भवभूत भाव समव्यन परमन प्रसन्न मिदन जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है, जो अत्यंत परम आनंद दिचलीन है, तो उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर, यही शुभ कर्म है, यही शुभ चिंतन है। अगां चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने, हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा, हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरीदा भगत है, हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा, ऐसा जो भगत है, जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है, ओदे सामने जग तुच्छ है, जोग साधना भी तुच्छ है, और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी वो भगत उच्चा है, जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है, और जग करने वाले तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मन दिए कि इना सारे कर्म कांडा तो भगत दी जिंदगी उच्ची है। जोग जग नै फल तुम मानो जो प्रभ जस बिरसरावे, जिथे भगत पहुंचे है उथे जोग जग दी पहुंच नहीं है, दान दी पहुंच नहीं है। इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत, हर भगत निज नह केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर विच आप कहिंदे ने, गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन, जयदेव आयो तस्सु फटन भवभूत सर्वगतन। गोविंद गोविंदा ऐ मनुख जाप कर, और इस तरह जाप करदे ही तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी, तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन विच ही संसार दे सुख ने, परमार्थ दे सुख ने, गोविंद दे सिमरन विच ही लोक सवर जांदा है, परलोक सुहेला हो जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
3: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।